0: ये मत भूलो कि इन लोगों की इमारतें तुम लोगों के खून पसीने से खड़ी हुई हैं दो दिन तुम में से कोई बीमार पड़ जाए तो मजदूरी नहीं मिलती क्यों रात रात भर तुमसे काम करवाते और खुद वहां पर नाच
1: ये क्या हो रहा है
0: आपको हम मजदूरों का हाल पूछने का वक्त मिल गया
2: कहना क्या चाहते हो
0: यही कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर कभी हम लोगों के घरों में भी झांक लिया कीजिए
2: क्या है वहां पे
0: दुख और गरीबी का वो मंजर जिसे देखकर पत्थर भी पिघल सकता है